0: Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: धान धाधीना कत धाधीना धान धीना धीना कत तेरे के धाधीना त्रकदे घिना धा धा घिना धिन धिन धिना ना धिन धिना त्रकदे तेरे के धा धाधीना कत धाधीना त्रिकड़धा त्रिकड़धे त्रिकड़धा धा धा धिन्ना त्रिकड़धा त्रिकड़धे त्रिकड़धा धाटी धाके धिन्ना के ना घिना ना धाटी धाके धिन्ना